जन्म जन्म की इस मन को मल लागे, काला होया सिया। किंतु खनली धोती उजली ना होवे जे सौ धोण पर जिहड़ा ये नाम है ना, जिन्ना मर्जी मन मैला होवे ये निर्मल कर दिंदा। आ जिहड़े गुण गाए, किंतु गुण गावत अतुल सुख पाया, गुण गावत तेरी उतर सुमैल, नाले मैल भी दसती केड़ी बिंस जाए हमे। ये चिंता च है ना, अचिंत हो जाएगा, हो हे अचिंत बसे पर स्वास ग्रास करना पैना, उदा नहीं गल बननी। स्वास ग्रास हर नाम संभाल, स्वास ग्रास ना बिसरे स्वाम, जो स्वास ग्रास ते आए मेरा हर हर वाहगुरु वाहगुरु, सो गुर सिख गुरु मन। अज सतगुरु तत् कढ के दस दिता ये पावन हुक्मनामा जिहड़ा तुसी सारे पढ़ के आए हो। अपने गुरद्वारा साहब अमृत वेले बख्शिश होया पंजवें पातशाह जी दे वचन ने। हाँ जी वाहगुरु, हाँ जी उधर पैन पुत इतें नहीं, पुत सिमरन कर रहे, मोबाइल नहीं देखना अंदर। आप सतगुर ने वेखो समा जे कढ के आए हाँ, किन्ना सोहना मौका दिता ते आपां कर लिए हैं जो सतगुरु का हुक्म है। अज फिर बचन नूं सुनो दोबारा, किंतु हर हर चरण रिदे उरतारे, वाहिगुरु वाहिगुरु जो बोल दे। चरणों बारे एक बार फिर समझ लीए आप, एक तो दृष्ट मान आ जेडे चरण साढ़े को, धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सारी ही बाणी चरण किया वाहिगुरु, इन्नी प्यारी अकाल पुरख दे बोल ने जैसी मैं आवे। तो इन्हां दे विच ओ जिहड़े सूखम चरण आ जिहनूं नाम किया वा, उसका भेद दिता होया, उस नाम नूं रतन किया। अज आएगा फेर दे कि नाम रतन सुन जप जप जीवां, उहनूं सुनना वा पर सुनन तों पहलां जपना पैना वा, इह आपां समझदे नहीं। नाम रतन जेड़ा है उदे नालों जन्म समय लिव टुट गई, जिसनू चरण क्या अकाल पुरख दे। ते की क्या उन्होंने, कहते हर हर चरण रिदे उर तारे, जो तुसी वो चरण प्रगट करने हैं नाम, ते फिर आ चरण फड़ने पैने पैना वाह गुरु। जे तुसी इनू फड़ लिया साडी सुरती ने, ते सुरती निर्मल हो जानी है, ते वो चरण अपने आप प्रगट हो जाने, वाहिगुरु दा नाम जिहड़े जन्म समय छुट गए सी। ਆਪਾਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾਮ ਮਰਯਾਦ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਮਨ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਮਰਯਾਦ ਆਇਆ ਕੱਲ ਪੀਤਰ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਸਾਡੇ ਦਾ ਜਨਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹਦੀ ਲਿਵ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾਮ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਇਹ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਾਇਆ, बस इत्थे मैला होना शुरू हो गया। इन्ना ज्यादा मैला हो गया, हुण सतगुरु की हजूरी च आए हैं, शरण च आए हैं, फिर वो तरीका दसदे ने, कहिंदे तुसीं फिर जे सिमरन करो ना, जिन्हों भुल के मैला हो गया, प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए, प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम, वो नाम कहिंदे तुहाडे अंदर फिर प्रगट हो सकदा जिन्हों चरण कहा। गुर के चरण हिरदे त्याए अंतर आत्मे संभाले, कहते फिर तुसी उन्हूं संभाल सकते हो, पर जे पहला आ बोलोगे वाहे गुरु हर हर चरण रिदे उरदा, जदों मन च वसना शुरू हो जाता ना नाम, उदों मन हिरदा बनता। यह आप अरदास अगे कर रहे सी, साचे साहिबा क्या नाही घर तेरे, घर तां तेरे सब किश है, जिस दे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी। आ जिहड़ा बोल रहे वाह, इन्हू मन च वसाउणा वा बोल के।

0: 그를 향 그름
1: एक चित जे किशन ते आयो
0: गुरु राम गुरु राम गुरु राम गुरु राम गुरु राम गुरु राम गुरु राम गुरु राम

जमन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जशन उपजायो, आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा।

कहूं सिमट भयो संग्रे कैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिखो बार सिख संगरो दुष्ट जते उठवत उत पाता सगल मलेश करो रणगाता जे अस्तु तब शरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हावे मरे पुरख जमन पग परे त्योहार तिनके तुम संकट सब ठारे जो काल को एक बार त्याय है ताके काल निकट न है रक्षा हुए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट

चौपाई संबत सत्रह सहस पणिजय अर्ध सहसुन तीन कहिजय भाद्रव सुधी अष्टमी रव बारा तीर सद्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित्रोपख्याने त्रिया चरित्रे मंत्री पुप संवादे 405 चरित्र समापतम सत्य।

सरगबर करा सगरी पुरी समेत चौपाई। जो ये कथा सुने अर गावै दुख पाप ते निकट न आवै। मिशन भगत की ए फल होई आद ब्याद शब सके न कोई। सम्मत सत्रह सहस पचावन हाड बदी प्रथम सुख दावन। त्व प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल परी लो लियो सुधारा दोहरा। नेत्र तुमके चरण तर सद्रव तीर तरंग श्री भगवत पूर्ण कियो।

सिद्धगोष्ठ एक ओंकार सतगुर प्रसाद सिद्ध सभा कर आसन बैठे संत सभा जयकारो तिस आगै रह रास हमारी साचा अपर अपारो सिद्ध सभा कर आसन बैठे संत सभा जयकारो तिस आगै रह रास हमारी साचा अपर अपारो मस्तक काट धरी तिस आगै तन मन आगे देओ नानक संत मिलै सच पाइय सहज पाए जस लेओ क्या पविय सच सुचा होए साच शब्द बिन मुक्त ना होए रहाओ।

राहो। कटकट बैस निरंतर रहिए चाले, सतगुर पाए सहजे आए, हुक्म सिधाए, नानक सदा रजाए। दुनिया

काफी आसा राग दे अंदर महाराज गुरु अमरदास साहब जी अठ पौड़ियां वाला काफी छंद उचार रहे ने। छंद का नाम है काफी। कई बार जो असी पढ़ते हैं भी काफी का मतलब की है, काफी छंद का नाम है, जिमें भुजंग प्रयात छंद, चाचरी छंद, जाप साहिब दे विच पढ़ते हैं आपां

शांति तां गुरु कोलो मिलती है, जिदे च ताकत हुंदी है त्रिश्ना दी अग नूं बुझाउण दी। होर तां किसे च ताकत ही नहीं हुंदी, साडे च ताकत थोड़ो है कि मन दी त्रिश्ना नूं मार लीए, शांत कर लीए। वो योगी राज भरतरी दे मन दी जिहड़ी त्रिश्ना ना, वो भी फिर जदों पूरे सतगुरु गुरु नानक देव साहिब महाराज जी दा संग होया, महाराज जी दी कला वरती, महाराज जी ने अपने वाहिगुरु शब्द दा गुरमंत्र दे के नवाजिया, फिर शांत हुई। जिन्ना चिर महाराज सिर ते हाथ रख के नहीं नवाजदे, उन्ना समा मन चो त्रिश्ना नहीं जाती। बंदा बजुर्ग हो जाता है ते उस दशा च जाके भी कदे पोतियां च, कदे दोतियां च, कदे किसे च, कदे किसे च मन दी बिरती अटकी रहती है। त्रिश्ना रूप होके कदे मन दी बिरती किते फसी रहती है, कदे किते फसी रहती है।

भगत कबीर साहिब जी उन्हां दी बाणी सारे भगतां दी बाणी तो ज्यादा दर्ज है श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच। और उन्हां नूं श्रोमणी भगत भी कहिंदे ने। श्रोमणी दा मतलब ये नहीं कि दूसरे भगतां तो श्रेष्ठ हन जां दूसरे भगत उन्हां तो थले ने। श्रोमणी उस नूं कहिंदे ने जिहड़ा बहुत सारे आस्पैक्ट्स नूं, बहुत सारियां गल्लां नूं, बहुत सारे आशियां नूं, बहुत पक्खां नूं, बहुत पक्खी बाणी जिहड़ी होवे जो जीवन के हर पहलू नूं छूंदी होवे, जो कर्म कांड ते भी होवे, अध्यात्म ते भी होवे, पखंड ते भी होवे। और कबीर साहब की बाणी च यह सारा कुछ मिलता है और बहुत गिनती च गुरु अर्जन देव महाराज ने बाणी दर्ज की है। इस करके उन्होंने श्रोमणी भगत कहते हैं। भाई गुरदास जी ने भी लिखा कि भगत वड्डा राजा जनक है। वड्डे का मतलब यह है कि अगो फिर आप

अमृत संत चुगे नहीं दूरे, हर रस चोग चुगे हैं प्रभ पावै, सर्वर में हंस प्राण पत पावै, गुर सागर रतनी भर पूरे, अमृत संत चुगे नहीं दूरे, हर रस चोग चुगे प्रभ पावै, सर्वर में हंस प्राण पत पावै, क्या बग बपड़ा छपड़ी नाए, कीचड़ डूबे मैल ना जाए, रहाओ रख रख चरण धरे विचारी, दुबिदा छोड़ पए निरंकारी, मुक्त

कहू कैसे, त्रिपवन जोत रहे लिबलाई, सुर नर नाथ सच्चे सरनाई, आनंद मूल अनाथ अधारी, गुरमुख भगत सहज विचारी, भगत

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय

वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु।

वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

नमः अष्टपदी सिमरौ सिमर सिमर सुख पाव काल कलेह तन माहि मिटाव सिमरौ जाल संपर एक नाम जपत अगंत अनेक वेद पुराण सिमरत सो दाखियर कीने राम नाम एक आखियर किन का एक दिह जीव सावे ता की महिमा गणी न आवे ताखी एक दर्श तुहारो नानकुन संग बोहे उदाहरू

संत दर्द दुख लथा नाम कि मैं मां संत रिद वसै संत प्रताप दुरत सब नसै संत का संग वडभागी पाई है संत की सेवा नाम त्याई है नाम तुल कछ वरना होए नान गुरमुख नाम पावे जन को इस रोग बहु शास्त्र बहु सिमृति पेखे सर्ब टडोल।

सरथी वै अगन माहे होमत प्राण कनक असव है वर भूमदान नेवली कर्म करै बहु आसन जैन मार्ग संजमत साधन निमख।

सुरभंग कह पिंगल परबत पर पवन नहीं हो तू हा उस गवन करतार करना में दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा तरह संग स

माता माया मिथ्या राज जो बन तन बाल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती अस भक्तरा मिथ्या रंग संग माया पेखस्ता

कत अवर लुभावे जिह प्रसाद सुख सेज सोई जय मन आठ पहर ताका जास गावी जय जिह प्रसाद सब को माने मुख ताको जस रसन बखाने

प्रभु चे देह प्रसाद पाई दुर्लभ देह नानक ताकी भगत करेह जेह प्रसाद भूखन पहरी जय मन तेह सिमरत क्यों आलस की जय जेह प्रसाद असव हस्ते सवारी मन तेह प्रभ को कबहु ना बिसारी जेह प्रसाद बाग मलिख तना राख परोए प्रभ अपने मन जिन तेरी मन बंत बनाई उठत बैठत साधत सहे त्याई तिसहे त्याए।

देह प्रसाद तू अचार बिहारी देह प्रभु को सास साचितारी देह प्रसाद रह सुंदर रूप सो प्रभु सिमरह सदाय अनूप।

कहै जे प्रसाद सुनहे करनाद जे प्रसाद पेखे विस्माद जे प्रसाद बोलहे अमृत रसना जे प्रसाद सुख सहजे बसना जे प्रसाद हस्त कर चल है जे प्रसाद संपूर्ण फल है जे प्रसाद परम गत पावे जे प्रसाद सुख सह समावे ऐसा प्रभ त्याग बरकत लागहु गुर प्रसाद नानक मन जागहु जे प्रसाद तुम प्रगट संसार तिस प्रभ को मूल न मन हो बिसार जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूर तू ता कहो जाप जे प्रसाद तेरे कार्ज पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे

पसोए। आप जपाए जपाए सो नाओ, आप गावाए सो हर गुण गाओ। प्रभु कृपा ते होए प्रगास, प्रभु दया ते कमल विगास। प्रभु सो प्रसन्न बसे मन सोए, प्रभु दया ते मात उत्तम होए।

नाही मान। ब्रह्म ज्ञानी उचते उचा मन अपने है सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पहे नानक जन प्रभाव करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल के जी नाम तुम रास ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब उपर माया ब्रह्म ज्ञानी ते कस बुरा न पहा। ब्रह्म ज्ञानी सदा सुंदर सी ब्रह्म ज्ञानी की दृढ़ अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी के निर्मल जुगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नान ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर

ब्रह्म ज्ञानी आम निरंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बणी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनहि श्लोक उर तार है जो अंतरनाम सर्व में पेख है भगवान निमख निमख ठाकुर नमस्कार नानक अपरस सगल निस्तारे अष्टपदी मिथ्या नाही रसना।

जैसी मत देत ऐसा प्रगास पार ब्रह्म करता विनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक पह निहाल श्लोक उस्तुत करे नेक जाने अंतर पार वार नानक रचना प्रभ रती।

होगी। कई कोड़ पंखी सर पे उपाय, कई कोड़ पाथर बिरखने बजाय, कई कोड़ पवन पानी बैस अंतर, कई कोड़ देश बहु मंडल, कई कोड़ ससियर सूर नक्षत्र, कई कोड़ देव दान इंद्र सिर छत्र,

परमेश्वर संत का निंदक राज तेहीन, संत का निंदक दुखिया हर दीन, संत के निंदक सर्व

नहीं थया। संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दुखी को दरगे में रह जाये, संत का दुखी सदा सहकाइये, संत का दुखी ना मरे ना जीवाइये, संत के दुखी की पूजे नासा, संत का दुखी उठ चले नासा, संत के दुख न त्रिष्टै कोय, जैसा भावे तैसा कोई होए, पया कीर्तन मेटै कोय, नानक जाने सच्चा सोए, सब घट दिसके ओह करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की उस्तद करो दिन रात, तिसे ते आवो सास गिरास।

स्वामी अपनी कृपा जो साफ करे। नानक सो सेवक गुर की मातले बीस बिस्वे गुर का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गात जाने सो सात गुर जिस हृदय हर नाव अनक बार गुर को बल जाव सर्वदान जी का दाता आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म जन जन में पार ब्रह्म एक आव नहीं कर परम सहस सयानप लया ना जाइए नानक ऐसा गुर बड़भागी पाइये सफल दर्शन पेखत पनीत परसद चरण गत निर्मल री

ना पाई। अनक भगत बंदन नित कर है चरण कमल हिरदय सिमरे सतबरे हारी सतगुरे अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने एहो हर रस पावै जन कोय अमृत पीवै अमृत सोहोए।

उपदेश पाव चुका का निरपा हुए बसे सगल ब्याद मन ते खैन से जिसका साधन कृपा तारी साध संग जब नाम रारी जत पाई चुके ब्रह्म गमन सुन नानक हर हर जस रमन निर्गुण आव सरगुण पियो ही कला तार जिन सगली मोही अपने चित प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिंदु जा नाही कोय सर्वन त्रे को सोए ओत पोत्र।

भगवान सर्व वैकुंठ मुक्त मोख पाए, एक निमुख हर के गुण गायन कराज, भोग बढ़ियाई हर के नाम की कथा मन पाई, बहु भोजन कापर संगीत रसना जपती हर हर नीत, भली सो करनी शोभा रवंत हृदय बसे पूर्ण गुरमंत, साध संग रब देहो निवास सर्व सुख नानक प्रगास, लोग सरगुण निर्गुण अंकार सुन समाधि आप अपन किया नानक आप ही फिर जा बस्तपदी।

तो कहो किस कहो गणी जावे के हरंग में अपार तब नरक स्वर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभु सह सुभा तब सेव सकत कहो कित ठाय।

सरस्वती आप कथया सुनने हार आपे का विस्तार जात भावित सृष्टि उपाय अपने पाने लै समाय तुम ते पहना ही कछो अपन सूत सब जगत प्रभु जाको प्रभु जी आप बुझाए सठ नाम सोजन पाए सो सुंदर सी तत का बेता नानक सगल सृष्टि का जेता।

फिर दे। गाव को जाप दिशा दूर, गाव को विखे हादरा दूर, कथना कथी न आवा तोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट, देंदा दे लेंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे, हुक्मे हुक्म चलाए राह, नानक बिगसावे परवाह, साचा साहिब साच नाहे, पाख्या पाहु अपार, आखे मंगे देहे देहे, दात करे दातार, फेर के अगे रखी है जित दिसै दरबार, महाऊं के बोलन बोली आए जित सुन।

जे को मन जाने मन कोय, मन मार्ग ठाक न पाए, मन पात स्यों प्रगट जाए, मन मगन चल पंथ, मन

दरबर गया, स्वर्ग है, अनिल है, अनाद है, अजय है, आजाद है, अजन्म है, अवर्ण है, अभूत है, अपर्ण है, अगंज है, अपंज है, चूज है, अचंज है, अमीक है, अर्वीक है, तंध है, अबंध है, निर्भूज है, सूज है, काल है, अजाल है, अला है, अजा है, अनंत है, महंत है, अलीक है, निर्शरीक है।

प्राप्त होए। साचा धन गुरमती पाए, काचा धन फुन आवै जाए। रहाओ मनमुख भुले सब मरे गवार, भवजल डूबे ना उरवार ना पार। सतगुर

आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। इत्थे बंदा उलझ जांदा, जिवें भगतां दी बाणी महाराज जी दे सरूप च दर्ज है। तकरीबन बाणियां दे अगे लिखिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मूल मंत्र संखेप रूप दे विच लिखिया मिलदा। ते फिर कईआं दे मन च सवाल आ जांदा भी बाणी भगतां दी है, भगत पहले होए है। ये एक ओंकार गुरु नानक देव जी ने उचारण किया सतगुर प्रसाद, ये भगतां दी बाणी नाल किवें जुड़ गया? गुरमुखो ये जुड़िया नहीं, ये गुरु अर्जन देव जी ने मोहर लाई है कि इस बाणी नू साडी बाणी तो घट समझण दी कोताही मत करना। ये साडी मोहर है कि असी इस बाणी नू प्रमाणिकता दित्ती। ये धुरकी बाणी है, कदे किसे सिख दे मन च शंका ना आ जाए कि सतगुरां दी बाणी तां धुरकी है बाकी भगतां दी नहीं। महाराज जी कहिंदे असी शंका कढ़िया सिखां दे मनां दा, कोई कल नू शंका ना करे। सो इत्थे वचन महाराज जी करदे आ वी चारे जुगां च बाणी है, सच्ची बाणी है, अमृतमयी बाणी है, मृत्यु तो रहित करने वाली बाणी है। हाँ है वाहिगुरु दी बाणी, आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। वाहिगुरु दे बोल जिहड़े जदों वाहिगुरु अपने भगत तो प्रसन्न हुंदे आ उहनूं बख्शिश करदे। वाहिगुरु दा एक एक बोल बाणी है। ते जिस भगत नूं जिस युग च महाराज मिले है ते की गल उस नूं महाराज ने कोई बचन नहीं कीते? कीते है, जो बचन कीते है उही बाणी है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। सच्ची बाणी है, परमात्मा दे बचन ने इह। ते जिस जिस भगत नूं जिस जिस युग जिस जिस जन्म च होए है सब सच्चे बचन ने जदों वाहिगुरु वल्लों हो गए। तां महाराज जी ने कहा चौह युग मह अमृत साची बाणी। चौ जुगां दे विच ही है मृत्यु तो रहित करन वाली सच्चे पातशाह दी बाणी, जिहदे ते कृपा करके बख्श दिंदे आ उहनूं हासिल हो जांदी है। पूरा भाग हर नाम समाणी। आ देखो महाराज जी ने वचन कर दिता पूरे भागां दे नाल इह बाणी जिहड़ी है भाई, इहदे विच सिख दा हिरदा और इस सिख दे हिरदे दे विच समाउंदी है।

महाराज जी कहते फिर ओनू योजा अनुभव हुंदा कि सब पासे सच्चा वाहिगुरु ही है, परमात्मा ही है। ऐसे उत्तम ब्रह्म नू कोई कोई बिरला बिरला पछाणदा है, किसे किसे नू दर्शन हुंदे है परमात्मा दे ऐसे स्वरूप दे।

आप ही अपने मार्ग से तोर लेंदा है। जेड़े गुरमुख एक बार महाराज के दरबार च आ गए, सेवा करन लग पे, सिमरन करन लग पे, जो भी करन लग पे, गुरमुखो महाराज जी का वचन मान के कमाया करो, उस विधि विधान नू तोड़ो ना। हौली हौली हौली हौली की देखोगे कुछ समय च ही कृपा हो जाएगी। महाराज दिन बदल देंदे आ, बंदे दे दिन पासा बदल देंदे आ बिलकुल। उन्हां लई कोई औखा नहीं। जेड़ा बंदे नू ऐ लगदा ना मैं बहुत गरीब हाँ, उन्हां दा की पता एक कख दे झपक जिन्ने समय च इन्ना अमीर बना देन भी बंदा हजार जन्म लैके भी ना सोच सके उतना। महाराज दे घर किसी चीज की घाट नहीं। इनियां बेनतियां प्रवान होइयां भुल्लां दी खिमा सतगुरु साहिब जी आप सब संगतां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखण, चरणा कमलों का प्यार सत्कार बख्शण।

राम नाम जप दिन सरात गुरमुख हर धन जान सब सुख हर भोगणे संत सभा मिल ज्ञान नित एहन सरप्रभ सेविया सतगुर दिया नाम कुकर कूड को माइय गुर निंदा पचे पचान परमे पूला दुख कणो जम मार करे खुलहान मनमुख सुख न पाइये गुरमुख सुख सुभान एथे तंद पिटाइय सच।

साहेब रब रहा भरपूर रहाओ, आपे माछी मछली आपे पानी जाल, आपे जाल मड़कड़ा आपे अंदर लाल, आपे बहु बिदरंग।

इन तज आत्मे हुए त्याई, जब तब संजम हुए जब रख है, कमल बिगसे मद आश्रमाई। बीस सप्ताहरो बासरो संग्रह, तीन खोड़ा नित काल सार, दस अठार में अपरम्परो चीन, कहे नानक इव एक तार। श्री राग महला पहला करती जा, अमल कर तरती बीज शब्दो, कर सच की आब नित देह पानी, होय किरसान इमान जमाय ले, पिस्त दोजक मूड़े एव जानी, मत जान सह गली पाया, माल के माने रूप की शोभा, इप इत विधि जन्म गवाया रहाओ। ऐब तन चिकड़ो एहो मन मींड को, कमल की सार नहीं मूल पाई, और उस्ताद नित पाख्या बोले, क्यों ना बूझे जान है बुझाई। आखण सुनना पौन की बाणी, एहो मन रता माया, खसम की नदर दिले पसिंदे, जिन कर एक त्याया। तिकर रखे पंज कर साथी, नाव सतान मत कट जाई, नानक आखे राहे पै चलना, माल तन कित कु संजया ही। श्री राग महला पहला कर चौथा, सोई मौला जिन जग मौलिया, हरिया किया संसारो, आप खाक जिन बंद रहाई, तन सिरजन हारो। मरना मुला मरना, पी करता रू डरना रहाओ, ता तू मुला ता तू काजी, जाने नाम खुदाई, जे बो तेरा पढ़िया होवे, कोई रहे ना परिये पाई। सोई काजी जिन आप तजया, एक नाम किया अधारो, है भी होसी जाए न जासी, सच्चा सिरजन हारो। पंज बख्त निवाज गुजारे, पढ़े कतेब कुराना, नानक आखे गोर सदे, रहो पीना खाना। श्री राग महला पहला कर चौथा, एक स्वान दोए स्वानी नाल, पलके पहुंके सदा बयाल, कूड़ छुरा मुठा मुरदार, तानक रूप रहा करतार। मैं पत की पंद न करनी की कार, हों बिगड़े रूप रहा बिकराल, तेरा एक नाम तारे संसार, मैं इहा आस एहो आधार।

0: ਗੁਰ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਪੌੜੀ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹਰ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਹਰ ਜੇਵੜ ਨਾਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣ ਹਰ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰਦਾ ਕਾੜਾ ਅੰਦੇਸਾ ਕਿਉਂ ਕੀਜੈ ਜਾਂ ਨਾਹੀ ਅਧਰਮ ਮਾਰਦਾ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਨਿਆਉ ਪਾਪੀ ਨਰ ਹਾਰਦਾ ਸਲਾਹਿਓ ਭਗਤੋ ਕਰ ਜੋੜ ਹਰ ਭਗਤ ਜਨ ਤਾਰਦਾ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਿਲ ਰਹਾ ਅੰਤਰ ਰੱਖਾਂ ਉਰਤਾਰ ਸਲਾਹੀ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਦਾ ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤ ਪਿਆਰ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਿਸ ਮੇਲ ਲਏ ਸਾਈ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾਰ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹਰ ਪਾਈਏ ਜਾਂ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਪਏ ਧਿਆਇਆ ਨਾਮ ਹਰੇ ਹੋਮੇ ਮਾਰ ਮਿਲਾਇਨ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਤਰੇ ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਸਮਾਇਨ ਹਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪੌੜੀ ਹਰ ਆਪਣੀ ਭਗਤ ਕਰਾਏ ਵਡਿਆਈ ਵੇਖਾਲੀਅਨ ਆਪਣੀ ਆਪ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਪੇ ਸੇਵਾ ਘਾਲੀਅਨ ਹਰ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਆਨੰਦ ਥਿਰ ਘਰੀ ਬਹਾਲਿਆਨ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਚੁਣ ਨਰਕ ਘੋਰ ਚਾਲਿਆਨ ਹਰ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰ ਅੰਗ ਨਿਸਤਾਰਿਆਨ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਬੁੱਧ ਡੋਮਣੀ ਕੁਦਇਆ ਕਸਾਇਣ ਭਰਨ ਦਾ ਕਟ ਚੂਹੜੀ ਮੁੱਠੀ ਕੁਰਦ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ ਕਾਰੀ ਕੱਢੀ ਕਿਆ ਥੀਏ ਜਾਂ ਚਾਰੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨਾਲ ਸੱਚ ਸੰਜਮ ਕਰਨੀ ਕਾਰਾਂ ਨਾਵਣ ਨਾਉ ਜਪੇਹੀ ਨਾਨਕ ਅਗ ਉੱਤਮ ਸਹੀ ਜੇ ਪਾਪਾਂ ਪੰਦ ਨਾ ਦੇਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਿਆ ਹੰਸ ਕਿਆ ਬਗੁਲਾ ਜਾਂ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੋ ਤਿਸ ਪਾਵੇ ਨਾਨਕਾ ਕਾਗੋ ਹੰਸ ਕਰੇ ਪੌੜੀ ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਏ ਸੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਏ ਕੰਮ ਸੋ ਹਰ ਪੈ ਆਖੀਐ ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚ ਸਾਖੀਐ ਸੰਤਾਂ ਸੰਗ ਨਿਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਾਖੀਐ ਪੈ ਪੰਜਨ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾਸ ਕੀ ਰਾਖੀਐ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅਲਖ ਪ੍ਰਭ ਲਾਖੀਐ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸਕਾ ਸਭ ਸਹਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵੀਐ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਤਾਰ ਹਉਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਨ ਕੋ ਜਿਨ ਧਿਆਇਆ ਹਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਮੁਖ ਸਦ ਉਜਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਜਗਤ ਕਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਉਲਟੀ ਪਈ ਨਵਨਿਧ ਖਰਚਿਓ ਖਾਓ ਅਠਾਰੇ ਸਿੱਧੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰਨ ਨਿਜ ਕਰ ਵਸੈ ਨਿਜ ਥਾਏ ਅਨਹਦ ਤੁਨੀ ਸਦ ਵਜਦੇ ਉਨਮਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਏ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਗਤ ਤਿਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਸੈ ਜਿਨ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਤੁਰ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਹੋਂ ਢਾਡੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਖਸਮ ਕਾ ਹਰ ਕੇ ਦਰ ਆਇਆ ਹਰ ਅੰਦਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਢਾਡੀ ਮੁਖ ਲਾਇਆ ਹਰ ਪੁੱਛਿਆ ਢਾਡੀ ਸਦ ਕੈ ਕਿਤ ਅਰਥ ਤੂੰ ਆਇਆ ਨਿਤ ਦੇਵੋ ਦਾਨ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਹਰ ਦਾਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਭੈ ਨਾਇਆ ਸੁਧ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਕਾ ਏਕ ਸਵਾਨ ਕਹਿ ਕਰ ਗਾਵਣਾ ਜਨਨੀ ਜਾਨਤ ਸਤ ਬੜਾ ਹੋਤ ਹੈ ਇਤਨਾ ਕੂ ਨਾ ਜਾਣੇ ਜੇ ਦਿਨ ਦਿਨ ਅਵਧ ਘਟਤ ਹੈ ਮੋਰ ਮੋਰ ਕਰ ਅਧਿਕ ਲਾਡ ਤਰ ਪੇਖਤ ਹੀ ਜਮ ਰਾਉ ਹਸੈ ਐਸਾ ਤੈਂ ਜਗ ਭਰਮ ਲਾਇਆ ਕੈਸੇ ਬੂਝੇ ਜਬ ਮੋਹਿਆ ਹੈ ਮਾਇਆ ਰਹਾਉ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਛੁਡੋ ਛੁਡ ਬਿਖਿਆ ਰਸ ਇਤ ਸੰਗਤ ਨਿਹਚੋ ਮਰਣਾ ਰਮਈਆ ਜਪੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅੰਤ ਜੀਵਨ ਬਾਣੀ ਇਨ ਵਿਦ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰਣਾ ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਲਾਗੈ ਪਾਉ ਭਰਮ ਪੁਲਾਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ ਉਪਜੈ ਸਹਿਜ ਗਿਆਨ ਮਤ ਜਾਗੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅੰਤਰ ਲਿਵ ਲਾਗੈ ਇਤ ਸੰਗਤ ਨਾਹੀ ਮਰਣਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਮਿਲਣਾ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਤਿਰਲੋਚਨ ਕਾ ਮਾਇਆ ਮੁਹਮਨ ਆਗਲੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਰਾ ਮਰਨ ਪੋ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਕੁਟੰਬ ਦੇਖ ਬਿਕਸੇ ਕਮਲਾ ਜਿਉਂ ਪਰ ਕਰ ਜੋ ਹੈ ਕਪਟ ਨਰਾ ਦੂੜਾ ਆਇਓ ਜਮੈ ਤਣਾ ਤਿਨ ਆਗਲੜੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਕੋਈ ਕੋਈ ਸਾਜਣ ਆਏ ਕਹੈ मिल मेरे बिठलाल पाड़ी बलाए, मिल मेरे रमैया महले छड़ाए रहाओ। अनेक अनेक भोग राज बिसरे, प्राणी संसार सागर पै अमर पया। माया मूठा चेतस नाही, जन्म गवायो आलसिया। बिखम कोर पंथ चालना, प्राणी रब सस नहन तहना प्रवेसंग। माया मोहत बिसर गया, जां तजी अले संसारंग। आज मेरे मन प्रगट पया है, पेखी अले धर्म राओ। तह कर दल कर महाबली, तिन आगलड़े मैं रहन न जाए। जे को मुँह उपदेश करत है, तहां ता वन त्रिन रतना रता रतड़ा नारायणा। ऐ जी तू आपे सब किछ जानदा, बद त्रिलोचन रामैया। श्री राग भगत कबीर जियो का, अचरज एक सुनुरे पंडिया। अब किछ कहन न जाई, सुर नर गण गंधर्व जिन मोहे। त्रिभवन में खुली लाई, राजा राम अनहद किंगुरी बाजै। जां की दिष्ट नादल बिलागै रहाओ। पाठी गगन सिंघिया अर चुंघिया, कनक कलश इक पाया। तिसमें तार चूहे अत निर्मल, रसमें रसन रसाया। एक जू बात अनूप बनी है, पवन प्याला साजिया। तीन पवन में एको जोगी, कहो कवन है राजा। ऐसा ज्ञान प्रगटिया पुरखोत्तम, कहो कबीर रंगराता। और दुनी सब परम पुलानी, मन राम रसायन माता। श्री राग बाणी भगत बेणी जियो की, पहरिया के कर गावना। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, नेर गर्भ कुंडल जब आछत। उर्द त्यान लिव लागा, मृतक पिंड पद मदना अहनिस। एक ज्ञान सुनागा, ते दिन समल कष्ट महा दुख। अब चित अधिक पसारिया, गर्भ छोड़ मित्र मंडल आया। तो नरहर मनो बिसारिया, फिर पछतावेगा मूड़िया। तू कवन कुमत परम लागा, चेत राम नाही जमपुर जाहेगा। जन बिचरे अनरादा रहाओ, बाल बनोद चंद्रस लागा। खिन खिन मोहे व्यापै, रसमिस्मेद अमृत बिख चाखी। तो पंच प्रगट संतापै, जप तप संजम छोड़ सुकृत मत। राम नाम ना आराध्या, उछलिया काम काल मत लागी। तो आन सकत गल बांधिया, तरुण तेज पर त्रैमुख जो है। सर अप सर ना पछाणिया, उन्मत काम महा बिख भूले। पाप पुन ना पछाणिया, सुत संपत देख एहो मनिया। गर्भया राम हृदय ते खोया, अवर मर्त माया मन तोले। तो पग मुख जन्म बगोया, पुंडर केस कुसुम ते तोले। सपत पताल की बाणी, लोचन सरम बुद्ध बल नाठी। ता काम पवस मधाणी, ताते बिखे पई मत पावस काया कमल कुमलाना। अवगत बाण छोड़ मित्र मंडल, तो पाछे पछताना। नकुटी देख मन धुन उपजै, मान करत नहीं बूझै। लालच करे जीवन पद कारण, लोचन कशु ना सूझै। थाका तेज उड़िया मन पंखी, कर आंगन ना सुखाई। बेणी कहे सुनो रे भगतो, मरण मुक्त किन पाई। श्री राग तोही मोही तोही अंतर कैसा। कन कटक जल तरंग जैसा, जौ पै हमना पाप करंता एहे अनंता। पतत पावन नाम कैसे हुंता रहाओ। तुम जो नायक आछो अंतर जामी, प्रभ ते जन जानी जे जन ते स्वामी। शरीर राधे मोको विचार देहू, रबदास समदल समझावे को। राग माज चौप दे कर पहला महला चौथा। एक ओंकार सतनाम करता पुरख। निर्भौ निर्वैर अकाल मूर्त, जोनी सह भंग प्रसाद। हर हर नाम हर मन पाया, बड़भागी हर नाम त्याया। गुर पूरे हर नाम सिद्ध पाई, को बिरला गुरमत चलै जियो। मैं हर हर खर्च लया बन पल्लै, मेरा प्राण सिखाई सदा नाल चलै, गुर पूरे हर नाम दड़ाया, हर निश्चल हर तन पल्लै जियो, हर हर सजन मेरा प्रीतम राया, कोई आण मिलावे मेरे प्राण जिवाया, हों रह न सका बिन देखे प्रीतमा, मैं नीर बहे बह चलै जियो, सतगुर मित्र मेरा बाल सिखाई, हों रह न सका बिन देखे मेरी माई, हर जियो कृपा करो गुर मिलो, जन नानक हर तन पल्लै जियो, माज महला चौथा, मधुसूदन मेरे मंतन प्राणा, हों हर बिन दूजा अवर न जाना, कोई सज्जन संत मिले बड़ भागी, मैं हर प्रभ प्यारा दसै जियो, हों मंतन खोज पाल पलाई, क्यों प्यारा प्रीतम मिले मेरी माई, मिल सत संगत खोज दसाई, विच संगत हर प्रभ वसै जियो, मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला, हम बारक दीन करो पतपाला, मेरा मात पिता गुर सतगुर पूरा, गुर जल मिल कमल विगसै जियो, मैं बिन गुर देखे नींद न आवै, मेरे मंतन वेदन गुर बिरों लगावै, हर हर दया करो गुरु मिलो, जन नानक गुर मिल रहसै जियो, माज महला चौथा, हर गुण पढ़िए हर गुण गुणिए, हर हर नाम कथा नित सुनिए, मिल सत संगत हर गुण गाए, जग पौजल दुत्तर तरिए जियो, आओ सखी हर मेल करेहा, मेरे प्रीतम का मैं देह स्नेहा, मेरा प्रिय मेरा मित्र सखाया सो प्रीतम, मेरा मित्र सखा सो प्रीतम पाई, मैं दसे हर नर हरिए जियो, मेरी बेदन हर गुर पूरा जाने, हों रह न सका बिन नाम बखाने, मैं औखद मंत्र दीजे गुर पूरे, मैं हर हर नाम उधरिए जियो, हम चात्रिक दिन सतगुर सरनाई, हर हर नाम बूंद मुख पाई, हर जल निध हम जल के मीने, जन नानक जल बिन मरिए जियो, माज महला चौथा, हर जन संत मिल मेरे पाई, मेरा हर प्रभ दसो मैं भूख लगाई, मेरी सरदा पूर्ण जग जीवन दाते, मिल हर दर्शन मन भीजै जियो, मिल सत संग बोली हर बाणी, हर हर कथा मेरे मन पाणी, हर हर अमृत हर मन पावै, मिल सतगुर अमृत पीजै जियो, बड़ भागी हर संगत पावै, भागहीन परम चोटा खावै, बिन भागा सत संग न लब्बै, बिन संगत मैल भरी जै जियो, मैं आए मिलो जग जीवन प्यारे, हर हर नाम दया मन तारे, गुरमत नाम मीठा मन पाया, जन नानक नाम मन भीजै जियो, माज महला चौथा, हर गुण ज्ञान हर रस पा हर हर गुण ज्ञान हर रस हर पाया, मन हर रंग राता हर रस प्याया, हर हर नाम मुख हर हर बोली, मन हर रस टुल टुल पौंदा जियो, आवो संत मैं गल मिलाइए, मेरे प्रीतम की मैं कथा सुनाइए, हर के संत मिलो मन देवा, जो गुरबाणी मुख चौदा जियो, बड़भागी हर संत मिलाया, गुर पूरे हर रस मुख पाया, भागहीन सतगुर नहीं पाया, मन गर्भ जूनी नित पौदा जियो।
1: माज महला पंजवां चुप दे कर पहला, मेरा मन लोचे गुरदर्शन ताई, बिलप करे चात्र के न्याई, त्रिखाने उतरे सांत न आवे, बिन दर्शन संत प्यारे जियो, कोहली जी कोहल कुमाई, गुरदर्शन संत प्यारे जियो, रहाओ तेरा मुख सुहावा जियो, सहज धुन बाणी, चिर होवा देखे सारंग पाणी, तम सुदेश जहां तू वसिया, मेरे सज्जन मीत मुरारे जियो, ਹੋ ਕੋਲੀ ਜੀ ਘੋਲ ਘੁਮਾਈ, ਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ ਜੀਓ, ਰਹਾਓ ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਦਾ ਕਲਯੁਗ ਹੋਤਾ, ਹੁਣ ਕਦ ਮਿਲੀਏ ਪ੍ਰਤੁਦ ਭਗਵੰਤਾ,

जन्म जन्म का बिछड़िया मिलिया साध कृपा ते सुखा हरिया समत पाए नाम त्याए गुरमुख होए मेला जियो जल तरंग जो जलहे समाया त्यों ज्योति संग ज्योत मिलाया कहो नानक भ्राम कटे कवाड़ा बहुड़ना होइए जौला जियो माझ महला पंजवां।

करके पै उंजल होम हे मिल जाहे सदा आनंद रहे पत करे दिन राति ही सुन गोविंद गुण गावणयाम मनुआ नाचे भक्त दुड़ाहे गुर के शब्द मने मन मलाहे सच्चा ताल पूरे माया मोह चुकावे शब्द नेत्र चुकावणया करावणया उच्चा कूके तने पिछाड़े है माया मोहे जुहा जम काले है माया मोह मने नचावे अंतर कट दुख पावणया गुरमुख पात जांग आप कराहे मन तन राता सह सुबाहे बाणी बजे शब्द बिजाहे गुरमुख पातें पावणया बोताल पुरहे बाजे बुजाहे ना को सुने न मन बुझाहे माया कारण पड़फत नाचे दूजे पाए दुख पावणया जिस अंतर प्रीत लगे सोह मुखता इंद्री वासु सच संज मजोगता है गुर के शब्द सदा हर थ्याहे एहा भक्त हर पावणया गुरमुख पात जुग चारे हो ही होर भगत न पावे को ही नानक नाम गुर भगती पाईए गुर चरणी चितला बणया माज महला तीजा सचा सेवी सच सलाही सचे नह कबू नाही सुखदाता सेवन सुख पैघन गुरमत मन बसा बणया हों बारी जियो बारी सुख सहज समाद लगा बणया जो हर सेवे से सदा सोहे सोभा सुरत सुहावणया रहा सब को तेरा भगत कहा है सोई भगत तेरे मन पाहे सच बाणी तुदे सलाहन रंग रते भगत को रावणया सब को सचे हर जियो तेरा है गुरमुख मिले ता चुके फेरा जा तुद पावे ता नाय रचाहे तू आपे नौ जपावणया गुरमति हर मन बसाया हर कसोग सब मोह गवाया एक सो लिब लागी सद ही हर नाम मन बसावणया भगत रंग राते सदा तेरे चाहे नौनित नाम बसिया मन वाहे पूरे भाग सतगुर पाया हुन सब दे मेल मला बणया तू दयाल सदा सुखदाता तू आपे मेले गुरमुख जाता तू आपे देवे नाम बड़ाही नाम रते सुख पावणया सदा सदा सचे तो दसलाही गुरमुख जाता दूजा को नाही एक सो मन रहा समाहे मन मनया मने समला बणया गुरमुख हो बे सो सलाहे सचे ठाकर बेपरवाहे नानक नाम बसे मन अंतर गुरसाबी हार मुलावणया माज महला तीजा तेरे पात सोहे सचे दरबार है गुर के शब्द नाम सवार है सदा आनंद रहे दिन राति गुण का है गुणी समा बणया हों बारी जियो बारी नाम सुन मन बसा बणया हर जियो सच्चा उच्चो उच्चा हों मे मार मुला बणया राह हर जियो सच्चा सच्ची नाही गुर प्रसादी किसे मुलाही गुर शब्द मुलाहे से बिछड़े नाही सहजे सच समा बणया तुझते तो बाहर कुछ न होहे तू कर कर वेखे जाने सोहे आपे करे कराए करता गुरमति आप मुला बणया कावन गुण बंती हर पाहे पाहे पाए सिंगार गुणाहे सतगुर सेव सदा सुहगुन सच पदेश समा बणया शब्द बसारन का ठार न ठाह परम फूले जो सुने कर गाह हालत पास दोहे गवाहे दुखे दुख बहावणया लिखदा लिखदा कागद मुसखोही दूजे पाहे सुख पाहे न कोही कूड़ लिखे ते कूड़ कमावे जल जले कूड़ चितला बणया गुरमुख सचो सच लिख विचार से जन सचे पावे मुख द्वार सच कागद कलम सवाणी सच लिख सच समा बणया मेरा प्रभु अंतर बैठा वेखे है गुर प्रसादी मिले सोही जन लेखे है नानक नाम मिले बड़िया ही पूरे गुर ते पावणया माज महला तीजा आत्म राम प्रगास गुरु ते होवे होमे मैल लगी गुर शब्दी होवे मन निर्मल अंदन भगती राता भगत

महिमा है, प्रियतम सदा है, बाला हूँ सदा अनंत रहे सुखदाता है। गुरमु सहजुषमावणया कायांदर हमें मेरा जमण मर न चुके फेरा है, गुरमुख हो सो हूँ मैं मारे हूँ सचो सच त्यावणया कायांदर पाप पुन गए पाही दो ही मिलके श्रेष्ठ हो पाही दो बेमार जाए एक करंगा बेहन गुरमुख सहजुषमावणया कर ही मैं दूजे पाए अनेरा चानन हो गए छोड़े हूँ मैं मेरा प्रगट शब्द हूँ है सुखदाता अंदन नाम त्यावणया अंतर ज्योत प्रगट पुरशो रंग गुरसाखी मिटिया अंधियारा है कमल बगास सदा सुख पाया ज्योति ज्योत मुलावणया अंदर मह रतनी परे पंडारा है गुरमुख पाहे नाम पारा है गुरमुख बांझे सदा पपारी अल्लाह नाम सद पावणया आपे बथ रखे आपे देहे गुरमुख बांझे के ही नानक जिस नर करे सो पाहे कर कृपा।

जो भावै त्यो रख तू सब करे तेरा कराया एक ना बख्शे मिल लै है गुरमती तुद लाया एक खड़े ते करे तेरी चाकरी मन नावै होर ना पाया होर कार विकार है सब सच्ची कार है लाया पुत कलात कुटंब है एक अलिपत रहे जो तुद पाया हो अंदर हो बार हो निर्मले सच्चे नाय समाया श्लोक महला पहला सोयने का परबत गुफा करी कै पानी पयाल कै विच धरती कै आकाशी उर्द रहा सिर भार पुर कर पकाया कपड़ पहरा धोवा तो सदाकार बगा रती पियला काला बेदा करी पुकार होए कुचील रहा मल धारी दुरमत मत विकार ना हो ना मैं ना हो होवा नानक शब्द विचार महला पहला वस्त्र पखाल पालक पखाले काया आपे संयम होवै अंतर मैल लगी नहीं जाने बाहरों मल मल धोवै अंधा भूल पया जम जाले वस्त्र पराई अपनी कर जाने होमै विच दुख काले नानक गुरमुख होमै टुटै ता हर हर नाम ते

बावड़ी आपे कुदरत साज के आपे करे विचार एक खोटे करे एक खरे एक खोटे एक खरे आपे परखण हार खरे खजाने पाइए खोटे सटिए बाहर वार खोटे सची दरगह सुटिए किसी आग है करे पुकार सतगुर पिछे भाज पवहे एहा करनी सार सतगुर खोट्यों खरे करे शब्द सवार हार।

जो खुदा एक तू ही महला पहला ना देव दानवा नरा ना सिद्ध साधका तरा अस्त एक दिगर कोई एक तू ही महला पहला ना दादे दिहांदे आदमी ना सप्त जेर जिमी अस्त एक दिगर कोई एक तू ही महला पहला ना सूर सस मंडलो ना सप्त दीप नह जलो अन्न पौन थिर ना कोई एक तू ही महला पहला ना रिजक दस्त ना आकसे हमारा एक आस बस वसे आस एक दिगर कोई एक तू ही महला पहला परंदय ना गिराह जार दरख्त आब आस कर दिहंद सुई एक तू ही

तित फल रतन लगे मुख भाकित हृदय हृदय निहाल। नान कर्म होवै मुख मस्तक लिखिया होवै लेख। 68 तीर्थ गुर की चरणी पूजा सदा विशेख। हंस हेत लोभ को

चित के होम जाग साधक पूजा पई है कार्य सो है। गुरु समुंद नदी सब सिखी नहात्या जित वडे आई, नानक जे सिर खुथे नावन, नानक जे सिर खुथे नावन नाही ता सत चटे सिर शाई।

खेती वन जना राखी ओट पाप पुन बीज की पोट काम क्रोध जी मह चोट नाम सा चले मन खोट।

बैठी सात ना अमृत केल करे नित कामन अवर लुटेन सो पंच जना चाहे टाहे मड़ोली लुटिया देहरा सातन पकड़ी एक जना जमडंडा गल संगल पड़िया भागे से पंच जना कामल कामन।

लाभ लोभ की तावस्था जब निरंजन रच समाना काहे बोले जोगी कपट कना रहाओ काया कमली हंस ए आना मेरी मेरी करत बिहानीता प्रणवत नानक नागी दाजै फिर पाछे पछताणीता गौड़ी चेती महला पहला औखद मंत्र मूल

तेरे दीन गुणा संसार कम समावे लख न लखना जाई रे रहाओ। सकर खंड माया तन मीठी हम तो पांडु चाई रे रात अनेरी सूजस नाही लाज टूकस मूसा भाई रे मानमुख करे तेता दुख लागै गुरमुख मिले वडाई रे जो तिन किया सोई हुआ कीर्तना मिटिया जाई।

अगन बिंब जल भीतर निपजे काहे कम कुमाए ताहे काहे काम उपाए मेरे साहेबा कौन जाना गुण तेरे कहे न जानी अवगुण मेरे रहाओ केते रुख बिरख हम चीने के।

दयाकरणं दुखहरणं उचरणं नाम कीर्तन दयाल पुरख भगवान नानक लिपत न माया। दयाकरणं दुखहरणं उचरणं नाम कीर्तन दयाल पुरख भगवान नानक लिपत न माया।

पौड़ी जा प्रभ पै दयाल ना व्यापै माया कोट अगा गै नास हर एक त्याया निर्मल पै शरीर

मन पाणी ऐसा जोगी वड़भागी भेटै माया के बंधन काटै सेवा पूज करो तिस मूरत की नानक तिस पग चाटै गौड़ी महला पंजवां।

सुख हर सरणी जलती अग्न निवारे गर्भ कुंड नरक ते रखे पव जल पारे उतारे चरण कमल आराधत मन में जम की त्रास बिदारे पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर उच्चा अगमे अपारे गुण गावत त्यावत सुख सागर जुए जन्म नहारे काम क्रोध लोभ

कराओ अनक जुगत नहीं पाया गुर चाकर ले आया मारे पंच बिखादिया गुर कृपा ते दल साध्या बगसी बक्सी।

जग तीर्थ किए बिच होमै बदे बेकार नरक सुर्ग दोए पुंचना होए बहोर बहोरे अवतार सेवपुरी ब्रह्म इंद्रपुरी निःचल को थाओ नाहे बिन हर सेवा सुख नहीं हो साकत।

रतन मन पाया, तन शीतल मन शीतल थिया, सतगुर शब्द समाया रहाओ। लाथी भूख त्रिशन सब लाथी, चिंता सगल बिसारी, कर मस्तक गुर पूरे धरियो, मन जीतो जग सारी। रिपते अगाए रहे रिदे अंतर, डोलन ते अब चूके, अखुट खजाना सतगुर दिया, टोट नहीं रे मोके। अचरज एक सुनोरे पाई, गुरे ऐसी बूझ बुझाई, लाहे परदा ठाकर जो पेट्यो, तो बिसरी तात पराई, कहे ओ न जाई, एहो अचंबो सो जा।

बचनी उचरै आगे महल न पाईऐ बूझै नाही एक सुधाकर ओ सगली झाख चकाईऐ नानक कहतो ए बिचारा जे कमावै सो पार ग्रामी गुर सेवो हर नाम त्यावो त्यागो मनो गुमानी गौणी महला पंजवां माधो हर हर हर मुख कहिया हम ते कछु न होवै स्वामी ज्यो राखो त्यों रहिया रहाओ क्या किश करे के करने हारा क्या इसे हार

समझावै करता है जो नावे रहो अनजानत किच इने कमानो जाप तप खचू न सादा दय दिस लय मन दुलायो कवन करूं करबादा मन तन मन तन तन पूम का ठाकर हूं इसका एह मीरा परमो कछु जस नाही ए पेखर पह पैरा तावे हो कहाँ कमावन परया जावे हो कुछ न होता जब एक नरेंद्र निरंकार प्रभु साहब के आपे करता अपने कर्तव्य आपे जाने जिन ए रचन छाया कहो नानक करणहार है आपे सतगुर परम चुकाया गोड़ी माला महला पंजा हर बिन अवर क्रिया फिरते जप तब संजम करम कमाने ए पूरे मूछे रहो भरत नेम संजम में रहता तिनका अड़ न पाया आगे चलन और है पाई वहां काम न आया तीर्थ नय और तरणी परम था आगे ठहर न पावे वहां काम न आवे ए विद ओ लोगन ही पति आवे चतुर वेद मुख बचनी उचरा है आगे मह न पाई है बूझे नाही एक सुदाखर ओ सगरी चाक चकाई है नानक कह तो एहो बिचारा जे कमावे सो पार ग्रामी गुरु से हो अर नाम त्यावो त्यागो मनो गुमाने गौड़ी माला महला पनवा माधो हो हर हर हर मुख कही है हम ते कछु न हो वै स्वामी ज्यों राखो त्यों रही है रहो क्या किच करे ते करने हारा क्या इस हाथ विचारे जित तुम लावो तित ही लागा पूर्ण खस हमारे करो कृपा सर्व के दाते एक रूप लीव लावो नानक की बेनंती हर पे अपना नाम जपावो राग गौड़ी माज महल्ला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद दीन दयाल दमोदर राया जियो कोट जना कर सेवा लगाया जियो भगत चल तेरा बिरद रखाया जियो पूर्ण सवने जाए जियो जियो क्यों पेखा प्रीतम कमल सुकरणी जियो संता दासी सेवा चरणी जियो एहो जियो बताई बल बल जाई जियो।

निर्भो नाम त्याई जियो, पहे कृपाल स्वामी मेरे जियो, पतत पवत लग गुर के पैरे जियो, परम पो काट किए निर्वैरे जियो, गुर मन की आस पराई जियो, जिन नाव पाया सो त्रवंता जियो, जिन प्रभ त्याया सो सो बावंता जियो, जिन साधु संगत तिस सब सुकरणी जियो, जन नानक सहज समाई जियो। गौड़ी माज पंजवा, गौड़ी महला पंजवा माज, आओ हमारे राम प्यारे जियो, रैण दिन सुसासा चितारे जियो, संत देव संदेशा पैचर नारे जियो, तुद बिन कित बिद तरिये जियो, संगत मारे मैं करे नंदा जियो, वंत्र त्रिबण सुख परमानंदा जियो, चेज सुहावी इो मन बिकसंदा जियो, पेख दर्शन इहो सुख लहिए जियो, कर चरण पखार करी नित सेवा जियो, पूजा अर्चा बंदन देवा जियो, दासन दास नाम जप लेवा जियो, बिनो ठाकर पै कहियो जियो, इच पुंडी मेरी मन तन हरिया जियो, दर्शन पेखत सब दुख पै हरिया जियो, हर हर नाम जपै जप तरिया जियो, ए अजर नानक सुख सही सही है जियो। गौड़ी माज महला पंजवा, सुन सुन साजन मन वित प्यारे जियो, मन तन तेरा एहो जियो पै वारे जियो, विसरणाई प्रभु प्राण अधारे जियो, सदा तेरी शरणाई जियो, जिस मिलिए मन जीवे भाई जियो, गुर प्रसादी सो हर हर पाई जियो, सब किछ प्रभ का प्रभ किया जाई जियो, प्रभ को सद बल जाई जियो, इड़हान जपे बड़ भागी जियो,

आठ पैर आराधी है पूर्ण सतगुरु ज्ञान रहो, जित कट वसै पार ब्रह्म सोही सुहावा थाओ, जम कंकर नेड़ ना आवे रसना हर गुण गाओ, सेवा सुरत ना जानिया ना जापे आराध, ओट करी जग जीवना मेरे ठाकर अगमागाद, पही कृपाल गुसैया नठे शोक संताप, तत्ते भावना लग गई सतगुर रखे आप, गुर नारायण दया गुर गुर सच्चा सिर जनहार, गुर तुटे सब किछ पाया जन नानक सत बलिहार, गौड़ी

अपनीत दीन बंद हर शरण तहे तुम आवो गज को त्रास मिट्यो जय सिमरत तुम काहे बिसरावो ताज अभिमान मोह माया पुन भजन राम चेत लावो नानक कैत मुक्त पंथ एव गुरमुख होए तुम पावो गौड़ी महला नौवा को माए भोलो मन समझावे भेद प्राण साध मग सुन कर निमखला हर गुण गावे रहो दुर्लभ दे पाए मानस की बिरता जन्म सिरावे माया मोह महासंकट मन तास रुच उपजावे अंतर बहर सदा संग प्रभता स्यो नेह ना लावे नानक मुक्त तय तुम मानो जे कट राम सुमा।

ना कोई करे राखे आप बढ़ियाई दे नील अनिल अगन एक ढाई जल निवरे गुर बूझ बजाए मन दे लिया रैस गुण गाई जैसा कर बाहर सो तैसा बैस गुफा में आखो कैसा सागर डूगर निर्भो ऐसा मुए को मारे कौन निडरे को कैसा डर कमन शब्द पछाने तीने पौन जिन कया तिन कहन बखानिया जिन बुझिया तिन सहज पछानिया देख बिचारा देख बिचार मेरा मन मानिया कीरत सूरत मुक्त एक नाई तई निरंजन रहा समाई निज कर व्याप रहा निज टाई उस करे केते मन प्रीत तन मन सूचे साच सोचीत